Ela é parte escrito subinapo na verdade. Isso tá piara piara chique, vale estar cá, mas isso é piara chique. Pelo menos aqui escrito subinapo. E, amare jo Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam de, ab amare Hazrat Bilal, Hazrat Bilal, Hazrat Bilal Sayyid Nabi. Tab, unki mangni ke andar gaye. तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह सरकार बोला आप क्या तो बड़ा प्यारा बाजा तो आप सरकार बोलते हैं कि आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के बेशक बोले बिलाल बिलाल बोलते हैं मेरे को बेशक बजा जाते तो बोले कैसे बजाते हैं तो बोले क्या बोलते क्या बोलता है फिर मुझे तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने बाजा बजाया